वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: pe Live Buddy.
1: On air.
0: App ma.
1: Ani smart speaker ma bandh hos.
2: Play BFBS.
0: You, BFBS Gorkha Radio Ho.
1: Radio. Gorkha Radio Ho.
3: नेपाल र भारतको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई बोलाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावलाई नयाँ दिल्लीले सिधै अस्वीकार गरेको छ।
4: नेपाल मामिलामा अधिक चासो दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो। जैसवालले दुई देशबीच 98% भूभागमा विवाद नरहेको दावी गर्दै नाम नलिइकनै लिपुलेक विवादलाई मसलाको संज्ञा दिनुभयो।
5: हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
4: यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा 17 गतेको सम्बोधनमा सीमा विवाद बारे बेलायतसँग पनि कुरा गर्ने बताउनु भएको थियो। जैसवालले रासोपा सभापतिको भ्रमण भाजपाको निमन्त्रणामा भएको बताउनुभयो।

0: सैन्य समुदायमा
1: बेलायतभरि
0: अन एयर
1: एपमा
0: अनि स्मार्ट स्पिकरमा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएफबीएस
1: यो बीएफबीएस गोर्खा रेडियो हो
0: गोर्खा रेडियो हो
3: नेपाल र भारतको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई बोलाउने प्रधानमन्त्री वीरेन्द्र शाहको प्रस्तावलाई नयाँ दिल्लीले सिधै अस्वीकार गरेको छ।
4: नेपाल मामिलामा अधिक चासो दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो। जैसवालले दुई देशबीच 98% भूभागमा विवाद नरहेको दावी गर्दै नाम नलिकै लिपुलेख विवादलाई मसलाको संज्ञा दिनुभयो।
5: हालाकि भारत नेपाल सीमाका लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
4: यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा 17 गतेको सम्बोधनमा सीमा विवाद बारे बेलायतसँग पनि कुरा गर्ने बताउनु भएको थियो। जैसवालले राष्ट्रपति सभापतिको भ्रमण भाजपाको निमन्त्रणामा भएको बताउनुभयो।
5: This visit is part of the contacts that are there between the two countries, between the political parties of the two countries. Yes, he was received at the airport. I saw some visuals of it, but he was received by the people who invited him. So, you know, the party invited him and he was received by them. He will be having high level meetings here and several other meetings, and these are part and parcel of, you know, these contacts are equally important because with Nepal we have multifaceted partnership.
4: Prashnottar karyakramma dherai jaso prashna pradhanmantri saha ko banai ra rashtrapa sabhapati lamisane ko bharat bhraman sanga sambandhit thie.
3: सीमा मिचेको विषयमा प्रधानमन्त्री वीरेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित प्रतिपक्ष दलहरूले आज पनि संसद बैठक अवरूद्ध पारेका छन्। शाहको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन वा तथ्य प्रमाण पेश गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक आउँदो सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठक अवरूद्ध पार्नु अघि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बोलेका थिए। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको प्रमाण माग्नु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङ,
6: नेपालले भारतको सीमा कहाँ कहाँ मिचिएको रहेछ त्यो कुरा उहाँले यहाँ आएर पुष्टि गरेर दिनुपर्छ। सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन, सरकारले गल्ती

आफ्नो लसको से जाजोनी पालेस नेपाली जाजो छेनिना चुना दिल जिगुना खरसमिला आदासा संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी आयोगको कार्यदल 2082 त्यो सरकार पाखे संविधान संशोधन या लागि दका चाहिँ छलफल या विषय दका चाहिँ विशेषना त नागरिक समाज र विभिन्न संघ संस्था या त छयाको पौ बारे सोझो खला नेपाल सरकार आयोगको संविधान 2072 देखे त लगभग नेदशी व्यापक यी कालमला 2064 साल निचे देखेको संविधान 2072 साले दिन प्रजुरले असोज 3 गते जारीजुल एजिया असोज 3 या त संविधान दिवस कथा चिसो हना भइछ ना तर ठोस संविधान संशोधन या त आयोगको सरकार जब नेनु नेद देखा देखेको संविधान या त संशोधन या त नेनु या ई बिया चाहिँ ठो पत्र त छोगु जुलखला नेनु या ई रेगुलासा जेठ 8 गते पत्र छोयला अले जेठ 15 गते चाहिँ संविधान संशोधन यो छुछु सुझाव त दु छोय चिरका चाहिँ छुय मागु जुल अले अन चाहिँ जमा नेगु क्याटेगोरी दु छौ शासकीय स्वरूप अटगा दैगु आयोगको पूर्ण संसदीय व्यवस्था ठिक जो कि तो चाहिँ संशोधित संसदीय व्यवस्था मागु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति जीव कि वा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जीव अझ खत दुनी अले विज्ञ मन्त्री जीवको व्यवस्था वा सांसद मन्त्री मजुको व्यवस्था मन्त्री परिषद गठन वा मन्त्रीको जवाफ दे यता आदि चाहिँ शासकीय स्वरूप जुल निर्वाचन प्रणाली अध्यय खुगु विभिन्न अन खत दु जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित वा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित जीवको निषेकया अले नोटा एघार चाहिँ यदि छिट चाहिँ चुनाव स्वित उम्मेदवार पिन्त थौ क्षेत्रीय भोट बिमासी महसा भोट बिमुखु र गाछु दिगु निषे राइट टु रिकल छि भोटे रुगला तर दु भोट चाहिँ दलित माल दास लिट कागु त निषेकया विदेशी चोपी नागरिकता त मताधिकार बिगु ख त कन अन दुगु जुल अले मेगुर गादैगु प्रदेश सम्बन्धी ख त अझ गय न्यो संघीयता सम्बन्धी ख संघीयता आजुन संघ प्रदेश व स्थानीय तह यो जु ख त मला अन चाहिँ गेना प्रशासनिक वित्तीय संघीयता गेना प्रभावकारी यागु ख निषेकया प्रदेश यु सम्बन्धी प्रदेश यु संख्या कुल त्यो प्रदेश यु संरचना मला प्रदेश यु निर्वाचित मुख्यमन्त्री त्यो कि छुया र गासा दको ख त जुल स्थानीय तह सम्बन्धी अले चाहिँ दलीय व्यवस्था यागु कि दल विहीन यागु कि स्थानीय तह त गेना उत्तरदायी यागु निषेकया फोरेगु चाहिँ न्यायपालिका न्यायपालिकाला जम्मा झिन छगु विषय दुख निकाल्न पोइन्ट त मला दुहानी जस्तै अन प्रधान न्यायाधीश गेना वा निर्वाचन वा मनोनीति आयोगलाई छुयाउ निषेकया यो कोही खत दुगाले संवैधानिक निकाय खत दु संवैधानिक निकाय संख्या गुली त्यो पदाधिकारी गेना त्यो पदाधिकारी त गेना उत्कृष्ट यागु मला महाअभियोग स्वित त्य मास भइ छुयागु निषेकया अले मेग विविध विषय दगा संसदीय अधिवेशन त गेना सोचाली दियागु गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वा उनी अमीगु अधिकार जनप्रतिनिधि पिनिगु योग्यता उमेर हद गुली त कसै अपि धन्य दैगु मला अझको यो कुरा खन्सेकया मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था निषेकया अले मेगु सातौँ दियो विज्ञ ते त मेगु विषय हेरेका चाहिँ त्यो त गुलो जम्मा एना चाहिँ नेगो क्याटेगोरी 46 प्रश्न थिए चाहिँ छोइ हगो जुल इथुकी नेवा दे दबुलिन छगु सहल ज्याजो गोसा गोजुल अले व सहल ज्याजो या ढुङ्गा वा चाहिँ 12 गते गोसा गोजुल सहल ज्याजो या ढुङ्गा 15 गते नेपाल सरकार या त चाहिँ छोगुदो अले ठुकी चाहिँ नेवास समुदाय पाखे चाहिँ गोजाको सुझाव गर्न लिएर गाथ्याले नेवास समुदाय राष्ट्रिय सङ्गठन खनेवा दिए दबु चाहिँ नेवास समुदाय मङ्का सरोकार वा सुझाव कथ शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली सङ्घीयता न्यायपालिका संवैधानिक निकाय वा मेमेगु सम्बन्धित विषय लिएर सुझाव छोगुजुल दे दबलिन ऐतिहासिक भाषिक सांस्कृतिक वा आदिवासी पहिचान या लिदस प्रदेश या पुनः सीमाङ्कन यामा नेवास स्वायत्त राज्य या सुनिश्चितता या मागु माग यागुदु विषय प्रदेश प्रमुख उगुह्य प्रदेश या बासिन्दा जीवको प्रावधान देखे त नहागु जुल अति सुझावे पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या व्यवस्था जी मागु सङ्घीय संसद प्रदेश सभा वा स्थानीय तहले आदिवासी जनजाति या न्यूनतम प्रतिनिधित्व कोटा सुनिश्चित जी मागु राष्ट्रिय सभा आदिवासी जनजाति भाषिक समुदाय समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित याना बहुजातीय प्रदेश सभा देखि मागु वा राज्य या फुक्क निकायले जातीय संख्या या आधार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य यातन सुझाव युगु जुल सँगै अत्यधिक शक्ति केन्द्रित जुगु खन यथासे सुझावे प्रदेश वा स्थानीय तह या त अवशिष्ट अधिकार सहित वास्तविक स्वायत्तता बितन माग यागुदु सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र या संरचना या व्यवस्था या मागु स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र निसना अनिवार्य कार्यान्वयन याना राजनैतिक
अधिकार अपेक्षुगु व जिल्ला समन्वय समिति खारिज्यामागु सुझाव न दुथ्याको जुल उगथे सुझाव स्थानीय तह या त मा भए पाखे शिक्षा संस्कृति व सम्पदा संरक्षण पूर्ण अधिकार दिमागु सांस्कृतिक व धार्मिक सम्पदा या व्यवस्थापन स्थानीय समुदाय त स्वायत्त अधिकार बीमागु खन दुथ्याका त अगदु न्यायपालिका सन्दर्भे फुक्क तह या अदालते मा भए छेरा बुलाय अधिकार सुनिश्चित यामागु व नेपाल भाषा नापा आदिवासी बाह्य शिक्षा प्रशासन न्याय व सार्वजनिक जीवन छेरे त अधिकार सुनिश्चित यामागु सुझाव न नेपाल सरकार या त बिगुदु पूर्ण धर्मनिरपेक्षता या सुनिश्चित यामागु संवैधानिक आयोग आदिवासी जनजाति या अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित यामागु व भाषा आयोग या त संवैधानिक आयोग या हे हैसियत सम्बन्धित धलखे दुख्याकेगु अलि सरकारी सेवा बहुभाषिक दक्षता या त योग्यता व प्राथमिकता या आधार देके त नापगुथी परम्परागत सामुदायिक भूमि व सांस्कृतिक सम्पदा स्थानीय समुदाय मङका अधिकार सुनिश्चित यागु लगायत या सुझाव न बिगु जुल शुक्रबार नेपाल सरकार या त सुझाव छुएन्य देदवली समुदाय या तर सहलयना सुझाव सहित अवधारणा पत्र तयार यागु ख अलि अति हे पद्मरत्न लुमन्ती गुथी पाखे नेपाल सरकार या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय संविधान संशोधन बहस पत्र तयार यागु कार्यदल 2082 सचिवालय या त संविधान संशोधन या त कया रा बिगुदु उथि बिगुरा या त कया अध्ययन जुवासँग ख कार्यदल सचिवालय लिखित जानकारी बिगु ख तागुदु पद्मरत्न लुमन्ती गुथी पाखे नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत जिमागु सरकारी ज्याखे खस भाषा नेपाली बाहेक मेमेगु राष्ट्रिय भा व लिपियान छेलिमागु जानकारी सुझाव बिगु ख उखथय संविधान संशोधन जी मुजुगु थे गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता व संघीयता नियथना तगुदु शासकीय स्वरूपे जाति गत प्रदेशगत व लैङ्गिक रूपके झोलीका प्रतिनिधित्व जुइगु कथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिगु उपराष्ट्रपति समावेशी जातीय सभा अध्यक्ष जुइगु प्रत्यक्ष निर्वाचित जनता प्रति जवाब दे कार्यकारी प्रधानमन्त्री जुइगु व विज्ञ मन्त्री पी जुइगु प्रधानमन्त्री प्रति जवाब दे जुइमागु व अफल झिन पे मधुजया मिसा व मिजा बराबरी ल्याखे जातीय समावेशी मन्त्री मण्डल जुइमागु सुझाव नगुथी बिगु छ लगातारले त न्युगो फरक फरक निवात पाखे वंगु जुल अले ठुके चाहिँ न्युगो फरक हे खत जुगु जुल आथन त पद्मरत्न लुमन्ती गुथी पाखे वंगु खले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या ख वंगु दुसा दे दवन वंगु लि चाहिँ थर्ड प्रत्यक्ष कार्यकारी या ख मनो लुगु चाहिँ मधुवाना ल अले आया गुहे व्यवस्था या त पचा चाहिँ बहुल जाति गेना चाहिँ अन स्वाकेगु ख म वगा मागु तर निर्वाचन प्रणाली चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू या मागु सँगै थका चाहिँ वगु जुल अलि नप जुन स्थानीय निकायले आज दलित थका दुसा तेगु कोटा दुसा गन गन अन स्थानीय आदिवासी तेगु मुला अन प्रतिनिधित्व अफदु अन चाहिँ आदिवासी तेगु प्रतिनिधित्व स्थानीय तहले न वनि मागु खत जुल अथो चाहिँ आ दको बिगु सुझाव छ जुल आथो सुझाव सरकार गुली मननीय मय आवला सरकार जुन ड्राफ्ट संशोधन संविधान संशोधन न ड्राफ्ट गा पिनै उपले जको छिगु खत न लाकि मला सुइगु जुल उपले चाहिँ बालक सोया यदि छिगु एजेन्डा त मला सा हक न हन त बा बिगु ज्या जुइ अले वयाली पाछ संविधान संशोधन पाखे नि तुलि दासे जाजो सा हक न छि सा मेगु मेस्वा